पाहे सोच करे रे प्राणी बार बार बार प्रभ जपिए नाम रतंजन गुरमुख पाया।

0: जन के किल बिख जाए।
1: आप जपो अवरा नाम जपावो,
0: सुनत कैत रहत गत पावो,
1: सार भूत सत हर को नाओ,
0: सह सवाय नानक गुण गाओ,
1: गुण गावत तेरी उतरस मैल,
0: बिनस जाए हो मैं बिख बैल,
1: हो ए चिंत बसे सुख नाल,
0: सास ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियाणप सगली मना,
0: सास संग पावे सच तना,
1: हर पूंजी संज करो व्यवहार,
0: यहाँ सुख दरगे जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: कौन नानक जाके मस्तक लेख।

0: जाने
1: सो क्यों बिसरे जिन सब किच दिया
0: सुख बिसरे जे जीवन जिया
1: सो क्यों बिसरे जे अगन में रखे
0: गुर प्रसाद को बिरला लाखे
1: सो क्यों बिसरे जे बिकते काटे
0: जन्म जन्म का टूटा गांडे
1: गुर पूरे तत एह बुझाया
0: प्रभ अपना नानक जानते आया
1: साजन संत करो यो काम सिमर सिमर सिमर सुख पावो
0: आज जपो अबरा नाम जपावो।

0: हम निर्गुण यार नीच अजान,
1: नानक तुमरी शरण पर भगवान,
0: सारा बैकुंठ मुकत मोख पाए,
1: एक नीम हर के गुण गाए,
0: अनक राज भोग बढ़ियाई,
1: हर के नाम की कथा मन पाई,
0: वो भोजन का पर संगीत,
1: रसना जपती हर हर नीत,
0: पली सो करनी सो बात।

0: जय निर्मल पुरख पुरख पते होता
1: मैल कौन क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: कै कौन कौन मान कौन अभिमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: कै शाल शीतल लक्ष को पीस
0: जय जोत रूपी जोत संग समावे
1: कै किसे पू कवन तिरतावे
0: करण करावण करने हार
1: नानक करते का नाही समार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: कवन माई बा मित्र सुध पाई
0: जय

0: सच व्यापार करो व्यापारी
1: लड़के निपेखे खत मारी
0: एक टेक रखो मन माहे
1: नानक बवर न आवे जाए
0: तिसते दूर कहां को जाए
1: उपरे राखन हार ते आए
0: निरपो जपे सगल पो मिटे
1: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे
0: जिस प्रभ राखे तिस नाही दोख
1: नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटे अहंकार
1: तिस जन को कोई न पंचन हार
0: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा
1: नानक ताके कार्य पूरा
0: मत पूरी अमृत जाके दृष्ट
1: दर्शन पेखत उतर श्रेष्ठ
0: चरण कमल जाके अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: तन सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामी पर प्रदान
0: जिस मन बसे सो होत।

वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उतपुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो संक्रिय कैठा सगरी सुष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे आस तुज तब शरणी परे तिनके

अंदर हाथ उबारू अमरेश बैरियन संगारू प्रथम तरु भगवत गोत अन्ना बहर करूं कविता बिद नन्ना किशन जथा मच चरित्र उचारू

कृत शास्त्र वेद सबाए बहु भेद गहे हम एक न जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहयो सब तो

जैसा कर्ण करीम न जातो करता तिल पीड़े ज्यों कहानियां खुश खुश लाई।

संत ना मिलियो वत्ते आपन पाणिया मौला खेल करे सब आपे एक कड्डे एक लहर वे आपे ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन सिर सिर करत विहाणिया मेहर करे ता खसम त्याई

कर दिया हो शब्द द्वारा, यानी के जवान ते भी वाहिगुरु ही है, परमात्मा ही है, दिल च भी ओही है ते उन्हां दे ख्यालां च भी ओही है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बारी एक अभ्यासी महापुरशां दे कुछ बोल सुनन दा समा मिलिया सी, वचन कर रहे सी, कुछ सीनियर अभ्यासी बैठे सी उन्हां कोल। वो कहंदे गुरमुखो अखीर दे विच तां एक ख्याल ही रह जांदा बस। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहंदे अखीर च एक ख्याल ही रह जांदा, वो वाहिगुरु दा ही रहिंदा बस हर वेले। आखो सतनाम, उसे ख्याल च टिके रहिंदा ते वो हर समय। कहंदे वो ख्याल जिवें अज सानू ख्याल आंदे आ, कदे कोई आ गया, कदे कोई आ गया, कदे कोई आ गया, कदे कोई, कदे टुट गया, कदे बन गया। कहिंदे इदां दा ख्याल नहीं, बस इक वारी बन जाए मुड़ के टुटदा नहीं, उत्थे ही सुरत टिकी रहिंदी है। उहदे विच ख्याल दा भांडा ही बन जांदा इक तरह दा, ते उहदे च ही गुरमुख दा अंदरला टिकिया रहिंदा वाहिगुरु दे विच। महाराज जी कहिंदे भाई

गुरु सत नाम श्री वाहे गुरु सा सत नाम श्री वाहे गुरु सा। सो महाराज जी कहंदे भाई इस तरह नाम दा मनन हुंदा है, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाए। हर वेले सदा सदा हर वेले नाम नू ही सलाउना है, सिफत करनी है तां वाहिगुरु दी करो, वाहिगुरु दे नाम दी करो। महाराज जी कहिंदे दुनिया कीआं वड़ियाईआं कब न आवै काम। दुनिया दी बंदा चापलूसी करदा रहिंदा है ते दुनिया दी वड़ियाई जिहड़ी है वास्तव च चापलूसी ही हुंदी है। कदों बंदे दे काम आई है, कदे काम नहीं आउंदी। पर जे बंदा वड़ियाई करे साहिब दी मालक दी, बंदे दा बेड़ा बन्ने ला दिंदी है। नामे महल पाई, इहने भाई नाम जपन करके, नाम मनन करके, नाम दी वड़ियाई करके नामी दे महल नू पा लईदा है। सचखंड दी प्राप्ति हो जांदी है। फिर किथे तां ओ घर ओ सुख जिहड़ा ना मुड़ के कदे खत्म होना है, ना कदे नास होना है, ओ फिर प्राप्त हो जांदा है। नहीं तां जो जो असी इस जन्म च खटिया, जो पिछलियां च खटिया सी, ओ गवाए आ। जिहड़ा इस च खटिया उहनू गवा देना है। लेकिन जिहड़ा रब दा महल है, ओ जिन्हों एक बारी मिल जाए, जिन्हों उत्थे एंट्री मिल जाए एक बार, बस फिर ओ सदा सदा लई भटकण तो बच जांदा है। नहीं चक्कर यह चलदा रहिंदा, माफ करना गुरमुखो, तुसी चाहे मन्नो इस गल नू, चाहे ना मन्नो, चाहे सुन के छड्ड दो, महाराज जी नू कोई फर्क नहीं पैंदा। क्यों? साढ़े वर्गे डेली लखां जमदे आ, लखां मरदे आ। इस करके लखां जमणगे, लखां मरणगे, फर्क किहनू पैणा है? मुड़ खिड़के सानू आप नू ही पैणा है। महाराज जी कहिंदे जिहड़े होका धुरकी बाणी दा सुन लैंदे आ उह सौखे हो जांदे आ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਖੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੁਕ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਮਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਲੰਘੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਖ ਦੇ ਝਪੱਕੇ ਜਿੰਨਾ। ਕਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਦੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚ ਜਾ ਵੜਨਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ
अणगौलिया करके छड के अपना समा खराब ना कर लियो। नाले जिहड़ी मौत दी गल है ना साध संगत जी, गुरु घर दे विच कीती जांदी है, डराउण लई नहीं कीती जांदी। कई बार कई सानू भी सवाल कर दिंदे आ वी तुसी उत्थे स्टेज ते बैठे डराउंदे रहने हो, जिहड़ा है सच असी डरा के की लैणा किसे नू। जां तां कह दो वी तुहानू आएगी नहीं, तुसी इत्थे बैठे रहोगे, फिर तां कह दईए वी असी डराउने आ जां बाणी डराउंदी है। पर जिहड़ी चीज है अवश्य आउणी है, कदों आउणी है, किस वेले आउणी है, किहनू आउणी है, किसे नू नहीं पता। किसे उम्र दा बंदा इस मौत ने छड्डिया होवे तां दस दो, एक दिन दे बच्चे तो लैके सौ साल दे बजुर्ग तक, एक दिन भी ने, एक दिन की एक सैकंड भी खाली नहीं निकलेगा। हर उम्र दे हर सैकंड दा बंदा इन्हें खादा मौत ने, सच्चाई है। ते महाराज जी इतो डरांदे नहीं, इहदा ज्ञान करवाउंदे है। जिन्हों ज्ञान होवे ओही नाम जप सकदा, ओही अत्याचार छड सकदा, ठगियां ठोरियां छड सकदा, ओही सूरमा बन सकदा। जे मौत तो डरांदे होइए फिर साडे च, साडी कौम च सब तो वध डरपोक बंदे होने चाहिए सी, पर सब तो वध दलेर बंदे साडी कौम च ने। क्योंकि जे मौत तो डरांदे होए, जे बाणी डराउंदी हुंदी, फिर इहदा नॉर्मली मतलब है भी सब तो वध डरपोक बंदे साडी कौम च होने चाहिए सी, पर सब तो वध दलेर कौम, मार्शल कौम साडी है, जिहड़ी कौम कदे नहीं डरदी, हमेशा ही कहिंदी है मन्नू असां दी दातरी, असी मन्नू दे सोए, सानू ज्यों ज्यों मन्नू वढदा असी दून सवाए होए। इह ओह कौम है जिहड़ी कहिंदी है तू इक खालड़े नू मार, इत्थे हजारां खालड़े खड़े होणगे। इह ओह कौम है। ते इहदा मतलब स्पष्ट जिहा हो जांदा वी डराउणा बाणी दा मकसद नहीं, असलियत दा बोध कराउणा बाणी दा मकसद है। और जिन्हां नूं असलियत दा ज्ञान हुंदा है ओह फिर जदों सिर धड़ दी बाजी लाउणी हुंदी है सब तों अगे खड़े हुंदे है। ओही जाना वारदे आ फिर, जिन्हां नूं असलियत दा बोध हुंदा है, जिन्हां नूं इह पता हुंदा है बिना आए तों हजारां गोलियां चलदियां होण मेरे बज नहीं सकदी, बिना आए तो जा नहीं सकदा, ते जदो आ गई रह नहीं सकदा, ते फिर डर किस चीज दा। जालम ने जुलम करना करके देख लवे, जिन्हें जो करना करके देख लवे। सो चलो आपां अपने विषय ते वापस आईए, असलियत दा ज्ञान करवाउंदे आ महाराज साहब जी सानू, ताही साडे च जोधे सूरमे दलेर जाना कुर्बान करन वाले हर कौम तो वध ने, हैगे ने, सीगे ते रहणगे रहिंदी दुनिया तक। क्यों? एक कौम कलगीधर पातशाह ने साजी है, मनुखता दे भले लई साजी है, सरबत दे भले लई साजी है, ते कौम सरबत दा भला करदी रहेगी। सो महाराज जी कहिंदे आ भाई जिहड़े लाहा लै लैंदे आ नाम जप जप के, ओह तां वाहिगुरू दा महल पा लैंदे आ, बाकी बेचारे जम दे मरदे रहिंदे आ। बेचारे जे बन जांदे आ, कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म है वर वृख जोयो, कहने एक एक जो जुन्नी च कई कई जन्म लैने पैंदे। हुण एक सप दी जुन्नी है, हजारां किस्म दे सप ने, ओह
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਜੁੰਨੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਚ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਕੋਈ 84 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਲਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੰਨਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਬ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ? ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੰਨਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜੁੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡ ਵੱਡ ਫਰਿੱਜਾਂ ਚ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੜਕ ਤੜਕ ਲੋਕੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਡੇ ਜੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਅੱਖ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਜੁੰਨੀ ਚ ਪੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ।

रे मन राम सिंह कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। सतगुरु जी कृपा करन सानू सबना नू धर्म करो नाम दी दात बख्शिश करन। इस तरह आप संगतां दा जिहड़ा प्रेम है गुरु चरणां दे नाल बनिया रहे। आओ सारे हुण आपां आनंद साहिब जी दी बाणी नाल जुड़िए।

अंतर तू समरथ सच देवनहार ऐ जी जप तप संयम सच आधार हर हर नाम देह सुख पाइए तेरी भगत परे भंडार रहाओ सुन समाद रहे लिव लागे

पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरता किया करते का होए बिचारो तित कर गावो सोहिला सिवरिहो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरपो का सोहिला हों वारी जस सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े सामालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कौन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन आसीसड़ियाँ ज्यो वै साहिब सिंह मेल कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरी है नानक से दे आवन राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तोए रहाओ विश्वे चस्या कड़ियां पहरा तिथि वारी बाहुआ सूरज कुरुत अनेक नानक करते के तेवेस राग तनाव सरी महला पहला गगन

नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव पर्या मिल साधु खंडल खंडाहे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पुन वड्डाहे का डंडौत पुन वड्डाहे रहाओ साकत हर साधने जानिया तिन अंतर हउ मैं कंडाहे ज्यों ज्यों चल चुबै दुख पावह जम काल सह से डंडाहे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जनम मरण पव खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाहे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाहे जन नानक नाम अदार टेक है हर नामे ही सुख मंडाहे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संतैल की बेला एहा खाड़ चलो हरलाहा आगै बसनु सुहेला औज कटै दिन सरैनारे मन गुर मिलका सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पे आवै एहो रसे अकत कथा तिन जानी जाको आए सोई बहाजो हर गुरते मन ही बसे राव निज घर महल पावो।

सिमरन दुख जम नस है, प्रभ कै सिमरन काल पर हरे, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टर है, प्रभ सिमरत कछ बिगड़ न लागे, प्रभ कै सिमरन अणदन जागे, प्रभ कै सिमरन भौ न ब्यापे, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापे, प्रभ का सिमरन साध कै संग सरबन दान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जब तब पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन होय सफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, से सिमरह जन आप सिमराए, नानक ता कह लागो पाए, प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदर मूचा, प्रभ कै सिमरन त्रिसना भुजय, प्रभ कै सिमरन सब कह सुजय, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरन आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद मह समाए, प्रभ जी बस है साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ कौ सिमरह से तनवंते, प्रभ कौ सिमरह से पतवंते, प्रभ कौ सिमरह से जन प्रवान, प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ कौ सिमरह से बेमहताजे, प्रभ कौ सिमरह से प्रभ कौ सिमरह से बेमहताजे, प्रभ कौ सिमरह से सर्व के राजे, प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी, प्रभ

भाग। प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहु न चूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन निहचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिंगासन।

हर हर नाम दिन घर कर तीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सृहत साजना सुख दुख जन समृष्टेता नानक पाव को नहीं ले पा निर्तन कव तन तेरो नाव निथावे को नाव तेरा थाव निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देव दान करन करामन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जन हुआ पे आपन संग आ प्रभ।

संग महापनीत। साध संग कैसे स्यो नहीं बैर, साधक संग न भीगा पैर, साधक संग ना ही को बंदा, साध संग जाने परमानंदा।

सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सक्षाय निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी।

करे लश्कर कोट लाख, जिसका शासन काटते आवता को राख दे कर हाथ मानस जतन करत बोपात, इसके करत मिर्थे जात मारे राखे वरन को सर्वदिया का राखा सोए काहे सोच कर हेरे प्राणी। जप नानक प्रभ अलाख बिडानी, जप नानक प्रभ अलाख बिडानी, बारंग काहे सोच कर हेरे प्राणी, जप नानक प्रभ अलाख।

मिल जाए। जिह धन को विचार कुंड उड़ता आवे सो तन हर सेवा ते पावे। जेस सुख काओ नित बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत।

मैं देख ससियर सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभु की सब को बोले आपे अडोल न कबहु डोले सर्व कला कर खेले खेल बोल न पाई गुने बोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार हो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नाम नानक तेन मैं हो विश्वास

आसन लोए लोए भंडार, जो किश पाया सो एका बार, कर कर वेखै सरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तस आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, एक दू जी बहु लख होहे, लख होवै लख बीस, लख लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीश, ए तराह पत पबड़िया,

तथा घड़िया सुरा सिदा की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर तथा होर न कोई होर। तथा जोध महाबल सूर तिन में राम रहे।

मनमाहे तथा भगत वसह के लो करे अनंत सच्चा मन सोए सच खंड वसह निरंकार कर कर वेख नदर निहार तथा खंड मंडल वर भंड।

अलंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ती विभूते कलंक मनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेशुं परम रूपे नमो योग योगे स्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेशुं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रमाने परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो योग योगे स्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रे देव सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाहं नमो भूपूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमः संसनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्र सदा सचिदानंद सर्व प्रणाशी अनुपे रूपे समसुल निवासी सदा सिद्धता बुद्धता बृहदर्ता अदो उर्दर्दं अगं ओघर्ता परंग परंग परमेशं ब्रोजपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग अशेदीय भेदीय नामंग अगामंग समस्तो पराजी समस्तस्तामंग तेरा जोहर चाजरी छंद जले है थले है अपीत है अपे है प्रभु है अजू है देश है भेस है पुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वाने समस्ती निधाने नमास्तवंग नरनाथे नमास्तवंग परमाथे नमास्तवंग अगंजे नमास्तवंग अपंजे नमास्तवंग अकाले नमास्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राज राजे नमो सा साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वगृहसं नमो सर्वरंगे तरभंगीय नंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणाशी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी

पुनीत मूर्त पूर्ण पुरखापार सर्व सर्व रचय स्वयं भव गण पंजनहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरखा देश धर्म धाम सुपरम रहता भूतलाखा भेस अंगरांगना रंग जाके जात पात नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्ताय काम आवरूप अमीक अनुसतेक पुरखा भूत गर्भ गंजन सर्वंजन आद्रुप सूत अंगहीन अपंगनात्मेक पुरखा पार सर्वलायक सर्व सर्वलायक सर्व का

आसन अपुपमा अनंग अनुभव प्रकाश निजन आनास आजान बाहो शाहन शाहो राजान राजान पहानान पहान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकाल रंकाल कालान काल अनुभुदंग अभ अभंगत मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अन्दंड बाढ़ चाचरी छंद।

गनी मुख राज है नृग स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनुभ समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव अकाम है निर्वास रूपे अगाध है अनुपे ओंगाध रूपे नाश रूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभरगन त्रिपादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्भागे सुसर्भा अनुरागे त्रिभुग स्वरूप त्रिभुग स्वरूप छिजय शूत गे नरक प्रणास है प्रथुल प्रवास है नृग प्रभा है सदैव सदा है विभुग स्वरूप प्रजुक्त अनुप है नृग सदा है विभुक्त प्रभा है अनुग स्वरूप प्रजुक्त अनुप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है अकर्म है अनाद है जुगाद है

को आ संग्रह पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवरना त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चौन चुन शत्रु हमारे मारी है आप हाथ मुझे उभरिया है मरण काल का त्रास नभरिया है उजो सदा हमारे पश्चा श्री सज्जू करियो रक्षा राख लिहो मोहे राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हाँ।

सपर कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक ही पीर पछन्न, घट घट गे बट बट की जान। जबद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ। जेते बदन सठ सब तार है,

लेहु उबारी सर्व ठावर मोह सहाय दुष्ट दोख ते लेहु बचाई। कृपा करी हम ब्रज जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किल विक सकल दे कुहरता दुष्ट दुखियन को शय करता

नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतपालो हो, हम बारक तुमरे तारे। जह बा एक कवन गुण कहिया, बेसमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही लहिया। रहाओ कोट पराध हमारे खंड हो, अनक विधि समझाव हो, हम अज्ञान अल

सो तै क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जाकै सिमरै निमख न ताको गायो माया को मद कहाँ करत है संग न काहू जाही नानक कहत चेत चिंता मन होय है अंत सहाई रामकली महला पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई चंद चढ़ह से तारे सोई दिन अर तप तरह सा धरती।

अवगत की गत गुरमुख जाति ताओ जानी जा शब्द पछानी एको रब रहया निर्वानी सुन समाध सहज मन राता तज हो लोभा एको जाता गुर चेले अपना मन मानिया नानक दूजा मीट समानिया राम कली महला पहला साहा गण है न करह विचार साहे ऊपर एक अंकार जिस गुर मिले सोई बिद जान है गुरमत होए ता हुकुम पछाण है झूठ न बोल पांडे सच कही है हो मैं जाए शब्द कर लही अरहाओ गण गण ज्योतक कांडी कीनी पढ़े सुनावे तत न चीनी सब सह ऊपर गुर शब्द विचार होर कथनी बदो न सगली चार ना वह तो वह पूजह सैला बिन हर राते मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ मुक्त प्राण जप हर किरतार्थ वाचा वादन वेद विचार है आप डुबे क्यों पितरा तार है घट घट ब्रह्म चीन जन को ए सदगुरु मिले त सो जी हो ए गणत गणिय सहसा दुख जी है गुर की शरण पवे सुख थी है कार अपराध शरण हम आया गुर हर भेटे पुरब कमाया गुर शरण न आईया ब्रह्म न पाईया भरम भलाईया जन्म मर आईया जम दर बाधो मरै बिकार नारिद नाम न शब्द आचार एक पादे पंडित मिस्र कहाव है दबदारा ते महल न पावै जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मध्य को जन आपार एक बुरा भला सच एक है बूझ गया नहीं सदगुर की टेक गुरमुख बिरली।

जाई। तीर्थ नावा जित सुभावा विन भाणे के नहाई करी जे तीसरठ उपाई वेखा विन करमा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी

शंख चोर हराम खोर, शंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फेराहे, असंख मलेश मल भख खाहे, असंख निंदक सिर करह भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोव खाण, जिने लिखे ते सरण आहे जिव फरमाए।

साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सुलाही क्यों वरणी किव जाना नानके आखण सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपू जाने अगे ज्ञाना सोहै पाताला पाताल लाखे आगासा आगास ओड़ कोड़ कपाल थके वेद कैनिक वात सहसे उठारे कैनक तेबा सुलू एक धात लेखा हुए ता लिखी आए लेखा हुए बनास नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सलाही सलाही ती सुरत ना पाईया नदियां ते वाह पवे समुंद ना जानी है समुंद सा सुल्तान ग्रह से ती माल धन कीड़ी तुल ना हो वनी जे तिस मनो ना विसर अंत ना सिवती कह नंत अंत ना करण दे नंत अंत ना वेखण सुन नंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कही है बहुता होए वड्डा साहिब उचा था उचे उपर उचा ना विवड़ी उचा होवै कोए तिस उचे को जाने सोए तिस उचे को जाने सोए जिवड़े आप जाने आप नानक नदरी करमी दात

जाई। मुंदा संतोष सरम पत झोली ध्यान की करे बेभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसे आदेश आद नील नादना हत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारन कड़कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साध।

जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जिव तिस भावै तिवह चलावै, जिव होवै फरमान, ओ वेखै उन्ना नदर न आवे बहुता एहो वडान। आदे तिसे आदेश, आद नील नादना हत, जुग जुगे को वेस। आसन लोय लोय भंडार, जो किश पाया सो एका वार। कर कर वेखै सृजनहार, नानक सचे की साची कार। आदे तिसे आदेश, आद नील नादना हत, जुग जुगे को वेस। एक

कहै पिछै पछताय। तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर।

गए मसकत काल, नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल। सोदा रागासा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो घर केहा, जित वह सर्ब संभाले वाजे तेरे नादे अनेक असंखा। किते तेरे वावन हारे किते तेरे राग परि स्यों कही है, किते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पाणी बै संतर, गावे राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सुन तेरे सदा सुवारे। गावन तुदनो इंद्र निरासन बैठे देवते अंदर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुरग मच प्याले। गावन तुदनो रत्न उपाय तेरे अड़सर तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोत महाबल सूरा, गावन तुदनो काणी चारे।

आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहा। जरन पिता लोक सुत बनता कोय न किसकी तरिया, सिर सिर जग सुभा ठाकर काहे मन।

सबनी ध्याया जिस नू कृपा करहै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुदया विछोड़या मिलाया तू दरिया सब तुझी माए तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खेल जोग मिल विछड़िया संजोगी मेला जिसनू तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सदी आख बखाना

नीच करमा सरन परे की राखो सरमा सोहला रा गौड़ी दीपकी महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय घर कीरत आखी आए करते का होए बिचारो तेत घर गावो सोहला सिमरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहला वारी जित सोहले सदा सुख होए रा नित नित जीड़े सुमाली अन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कमन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजनिया सीसड़िया ज्यो होवे सैब स्यो मेल घर घर रेहो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरी आय नानक से देवन रागासा महला पहला छे घर छे गोरा छे उपदेश गुर गुरे को वेस अनेक बाबा जय घर कीरत होए सो का रख वडाई तोय रहा विसया कड़िया पैरा

करे सगल मुन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए बब खंडना तेरी आरती अनाहता शब्द वाज अंत भेरी रहा। सहसताव नैन नानक नैन है तोहे को सहस मूर्त ननायक तोही। सहस पद बिमल नानक पद गंध बिन सहसताव गांधे विचलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मैं चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुभावे सो आरती होए। हर चरण कमल मुकरांद लोभित मन वंदन मई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग होए। जाते तेरे नाय वासा रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाए। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडाए। कर साधु अंजलि पुन वडाए।

जिथे लेखा मंगिए तिथे होए सचा निशान रहाउ। जिथे मिले वडियाईया साध खुशियां साध चाओ। तिन मुख टिके निकले जिन मन सचा नाओ। कर मिले ता पाइए नाही गली वाओ दुवाओ। एक आवै एक जाए उठ रखिए नाव सलार। एक उपाय मंगते इक ना वड्डे दरबार। अगे गया जानिए विरनावे वैकार। वेकार भय तेरे डर अगला खप खप छिजै दे। नाम जिन्ना सुल्तान खान हुंदे डिठे खे। नानकी उठी चलिया सब कूड़े टुटे ने। श्री राग महला पहला। सब रस मिठे मनिया सुनिया सा लोने। खड़ तुरसी मुख बोलना मारन।

मिलै अंक से लड़िया मिल कै करें कहानिया समरथ कंत किया साचे साहिब।

जिन्यो जगती उपाया त्रै पवन करी अकार गुरमुख चानन जानिए मन मुख मुगद गुबार कट कट जोत नरंतरी बूझे गुरमत सार गुरमुख जिनी जानिया तिन कीचे सबास सचे सेती राज मिले सचे गुण प्रगास नानक नाम संतोखिया जियो पिंड प्रापास श्री राग महला पहला।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगह मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर सुर सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित्यन सर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कुकर कूड़ कमाइए गुर निंदा पचाए पचान। पर में भूला दुख कणो जमार करे खुलहान मनमुख सुख न पाइए गुरमुख सुख सुभान। ऐथे तंद पिटाई है सच लिखत परवान हर सज

वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी साहब गुरप्रसाद जप आदि सच जिगाद सच है पी सच नानक होशी भी सच

कोट कोट पढ़ना कुलचक माफ तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धनबाद नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाण स्वादा बना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल।

दापाल दियो एको अहंकार सदगुरु प्रसाद श्री राग महला पहला पहरे कर पहला पहले पहराए रैन के बन जा रहा मित्रा हुकम पया कर पास और सप अंतर करे बन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास खाने और ध्यान लव लागा नाम रजा दया कल्पितर बहुड़ जासी नागा जैसी कलम बुढ़ी है मस्तक तैसी जेड़े पास को नानक प्राणी पहले पैरे हुकम पया कर पास दूजे पैरे रहन के बन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथ हथ न चाहिए बन जा रहा मित्रा जन जसुदा घर खान हथ हथ न चाहिए प्राणी मात कहे सुत मेरा चेत अचेत मुड़ मन मेरे अंत नहीं कस तेरा जन रच रचया तिस न जाने मन पीतर धर ज्ञान को नानक प्राणी दूजे पैरे विसर गया ध्यान तीजे पैरे रहन के बन जा रहा मित्रा धन जो बन स्यों चेत हरका नाम न चेते बन जा रहा मित्रा बद्दा छुटे जेत हरका नाम न चेते प्राणी बिकल पया संग माया धन सिंह रत्ता जो बन

अन्ना महर कदय न संभाल जय हो अंत सखाई ए धन संपे माया चुटी अंत छोड़ चले आप चताई जैसनो कृपा करे गुरु मेले सोहर नाम संभाल कौ नानी जय प्यारे पा प्राणी से जाय मिले हर नाल चौथे पैरे रैन के बन जा रहा मित्रा हर चलन वेला यादि कर सेवा पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चले रैन विहादे हर सेवा खन खन टल मोल ना करो जिथे असथे रजुग दुग होब हर चेथे सदमान रलिया जन्म मरण दुख खोब गुरु सतगुरु स्वामी भेद न जानो जित मिल हर भगत सुखान दे कौ नानक प्राणी चौथे पैरे सफल रहन भगतान दे श्री राग महला पंजवा पहले पैरे रहन के बन जा रहा मित्रा धर पायता उदरे माहे दसी मासी मानस गया बन जा रहा मित्रा करम मुहूर्त कर्म कमाहे मुहूर्त कर दिनी कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया मात पिता भाई सुध बनता तिन पितर प्रभु संजोया कर्म स्वकर्म कराए आप तिस जनते बस किस नाहे कौ नानक प्राणी पहले पैरे थर पाए तरे माहे दूजे पैरे रण के बन धर मित्रा पर जवानी लहरी दे बुरा भला न पछाणी बन जा रहा मित्रा मन मता मेव बुरा भला न पछाणे प्राणी आगे पंथ करारा पूरा सतगुर कब न सेव्या सुर ठाडे जम जंदारा थर्म राय जब फकर सबब रे तब क्या जवाब करे कौ नाने दूजे पैरे प्राणी भर जो बन लहरी दे तीजे पैरे रण के बन जा रहा मित्रा विगड़ संचाए अंध अज्ञान पुर पुत्र कलत्र मोह लपटिया बन जा रहा मित्रा अंतर लहर लुभान अंतर बाहर अंतर लहर लुभान पराने सो प्रवचेतना आवे सासंग स्यो संग न किया बहु जोनी दुख पावे सिरजन हार विसारिया स्वामी एक निमुख न लगो त्यान कौ नानक प्राणी तीजे पैरे बिख संचय अंध अज्ञान चौथे पैरे रहन के बन जा रहा मित्रा दिन नेड़े आया सोए गुरमुख नाम संभाल तू बन जा रहा मित्रा तेरा दरगाह बेली होए गुरमुख नाम संभाल प्राणी अंत होए सखाई एहो मोह माया तेरे संग ना चल झूठी प्रीत लगाई सगली रैन गुदरी अंधियारी सिव सतगुरु चानण होए कौ नानक प्राणी चौथे पैरे दिन नेड़ा आया सोए लिखे आया गोविंद का बन जा रहा मित्रा उठ चले कमाड़ा साथ एक रते बिल मना देवनी बन जा रहा मित्रा उन्ने तकड़े पाए हाथ लिखे आया पकड़ चलाया मानमुख सदा दुहेले जिन्ने पूरा सगुर से व्या से दरगाह सदा सोहेले कर्म धरती शरीर जोग अंतर जो बोवै सुखात कौ नानक भगत सो है दरबारे मनमुख सदा पवात श्री राग महला चौथा कर दूजा छंत एक ओहकार सतगुरु प्रसाद मुंद एयानी पेयड़े क्यों कर हर दर्शन पिख्या हर हर अपनी कृपा करे गुरुमुख सौरडे काम सिख्या सौरडे काम सिख्या गुरुमुख हर सदा त्याए सहिया विच फिरे सोहेली हर दरगाह बांछ लुडाए लेखा धर्म राय की बाकी जब हर हर नाम के रिखा मुंद एयानी पेयड़े गुरमुख हर दर्शन दिखा विवाह हुआ मेरे बाबला गुरमुख हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान पर चंड बलाया बल्या गुर ज्ञान अंधेरा बिनस्या रतन पदार्थ लादा हमें रोगया दुख लाचा आपे आपे गुरमत खादा अकाल मूरत बार पाया बनासी ना कद मरा ना जाया विवाह हुआ मेरे बाबूला गुरमुख हर पाया
हर सत सत है मेरे बाबला हर जन मिल जंज सुहंदे पे विकड़े हर जप सुहेली विच सहुरडे खरी सुहंदे सहुरडे विच खरी सुहंदे जन पे विकड़ा नाम संभालिया सब सफल्यो जन्म तिनांदा गुरमुख जिन्ना मन जन पासा ढालिया हर संत जना मिलकार सोहया वर पाया पुरख आनंदे हर सत सत मेरे बाबला हर जन मिल जान जय सुहंदे हर पर मेरे बाबला हर देवो दान मैं दाजो हर कपड़ो हर शोभा देवो जित सबरे मेरा काजो हर हर भगति काज सुहेला गुरु सदगुरु दान दिवाया खांडवर पांड हर शोभा होई ए दान नारले रलाया होर मनमुख दाज जे रख दिखा मैं सो कूड़ा कार कछ पाजो हर पर मेरे बाबला हर देव दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबला फिर मेरे धन वेल बदंदी हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो सर पीढ़ी गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चले सतगुरु की जिन गुरमुख नाम ध्याया हर पुरख न कभी बिन सजावन देवे चढ़ सवाया नानक संत संत हरे को जप हर हर नाम सुहंदी हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल धन वेल वदंदी श्री राग महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मन प्यारिया दियो मित्रा गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निभै तेरा नाले संग साई हर नाम त्याई बिरथा कोय न जाए मन चिंदे सही फल पावे चरण कमल चित लाए जल थल पूर रया मरमारी घट घट नदर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भरम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जी मित्रा बिख सागर संसारे चरण कमल करवो हित करते सहसा दुख न व्यापे गुरपुरा भेट बड़भागी आठ पहर प्रभ जापे आदि जुगादि सेवक स्वामी भगता नाम धारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसा मित्रा हर लदे खेवस वली मन प्यारिया जीव मित्रा हर दार निश्चल मल्ली हर दर सेवे अलख पेवे निचर आसन पाया तै जन्म न मरना आवन जाना संसा दुख मिटाया चित्र गुप्त का कागज फारिया जम दूता कछु ना चले नानक सिख दे मन प्रीतम हर हर लदे खेपस वली मन प्यारिया जीव मित्रा हर संता संग निवास मन प्यारिया जो मित्रा हर नाम जवत पर गासो सिमर स्वामी ब सुख्यागामी इच्छ सगली पुनिया पुरवे कमाए श्री रंग पाए हर मिले श्री विछुनिया अंतर बाहर सर्वत रव्या मन उपजिया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संता संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मिल जीव मीना हर पी अगाने अमृत बाने सर्व सुखा मन उठे श्री धार पाए मंगल गाए अच पुन्ने सतगुरु तुठे लड़ दीने लाए नौन रपाए नाम सर्व ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के छंद महला पंजमा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद दखना हट मजाहू मा प्रीत पछे को क्यों दीदार संत सुनाई लभने नानक प्राण आधार छंत चरण कमल स्यो प्रीत रीत संतन मन आवै जियो द्वितीया भाओ विपरीत अनित दासा न पावै जियो दासा न पावै बिन दरसावै एक खिन तीर्थ क्यों करै
ना बिहोना तन मन ही ना जलव बिन मछली ज्यो मराय मिल मेरे प्यारे प्राण दारे गुण साध संग मिल गावे नानक स्वामी धारन गुरह मन तन अंक समावे दखना सुहंदड़ो हवठाए कोई न दिसो डूजड़ो खुलड़े कपाट नानी सतगुर भेट तय छंत तेरे बचन रूप अपार संतन आधार बाणी बिचारी जियो सिमर सास ग्रास पूर्ण विश्वास

विसारिय ज्यो को मन विसारिय निमकने टारिय गुणवंत प्राण हमारे मन बा चतफल देत है स्वामी जी की वृथा सारे अनाथ के नाथ सर्व कैसा थे जब जुए जन्म न हारिय नानकी बेनंती प्रभ पै कृपा कर पव जल तारिय दक्षिणा तूड़ी मदन साद खेसाई थी कृपाल लदे हब ठोकड़े नानक हर तन माल छंत सुंदर स्वामी धाम भक्त विश्राम आशा लग जीवते दियो मन तने गलतान सिमरत प्रभ नाम।

कुमार्या सर्वस्व सुख आनंद कर प्यारे हर रत्न मन अंतर सेवते एक तिल नहीं विसरे प्राण अदारा जप जप नानक जीवत डखना जो तो किने अपने तिना को मिलियो आपे ही आप मोहियो जस नानक आप सुनियो छंत प्रेम ठगोरी पाय रजाय गोविंद मन मोहिया प्रेम ठगोरी पाय रजाय गोविंद मन मोहिया जियो संता के प्रसाद अगाध कंठ लग सोहिया जियो हर कंठ लाग सोहया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस पाए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया चुप जाया बड़ न माया होया कर गलीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोल किम न कोई जान दो जिन्ना भाग मथाए से नानक हर रंग मान दो छंत कहते पवित्र सुनते सब तन लिखंते कुल तारिया जियो जिनको साधु संग नाम हर रंग तिने ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गली ने हर जसो दिने जो न तावे न मरी सतगुरु दयाल कृपाल पेट थरे काम क्रोध लो मारिया कथन जाया कथ स्वामी सदके जाए नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणदारा एक ओंकार सत नाम गुरु प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोए हर जी सब प्रतिपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई तबने बिना कोए दमो माया चित लाइन दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया रे अंत सखाई होए मैं हर बिना अवरना कोए हर गुर सुनाई पाई बन जा रहा मित्र बड़ भाग प्राप्त होए रहाओ संत जना बिन पाया हर किन न पाया नाओ हां विच अमृत विच होमे कर्म कमाम दे जो वेसवा पूत ने नाओ

करम कमाओ, मन हर हर लगा चाओ, गुरुपुरे नाम दृढ़ाया, हर मिलया हर प्रवनाओ राओ, जब लग जोबन सासाए तब लग नाम त्याए।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री राखी वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा रागा विच श्री राग है जे सच धरे प्यार सदा हर सच मन वसे नचन मत अपार रतन मोल पाया गुरु का शब्द विचार जेवा सच्चे मन सच्चा सच्चा शरीर आकार नानक सच्चे सतगुरु सेवे सदा सच सुभा व्यापार

दूर करे। हर तिसनो सलाहे जतद रखे बाहर कार, हर जिसनो हो दयाल दयाल, जिसनो हो दयाल सो हर जप पाओ। बिखमतार श्लोक महला पहला। दाते साहेब संधिया क्या चलै ते नाल, एक जगन दे ना लहन इक ना सुत्यां दे। उठाल महला पहला। सिदक सबूरी साधिका, सबरत साम लायका, दिदार पूरे पायसा था नाई खायका। पौड़ी सव्या पे तुदे पाए के आप कर लाई, तुदे आपे वेख विसदा अपनी वड्याई, अर तो दो बार किछ नाई तू सच्चा साई। तू आपे आप वरतदा सब नीही थाई, हर तिसे त्याव संत जन जो लय छडाई। श्लोक महला पहला।

अचेत हथ तड़ाया श्रोक महला तेजा पड़ पड़ पंडत वेद बखाने माया मो स्वाय दूजे पाए हर नाम विश्वास।

अपना मन मारिया शब्द कसवटी लाए मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल सथ मन ही मंज सुमाए।

लाख 84 फेर पे अमर जम होए खुआर सगुर के सेवा सो करे जैसनो आप कराए सए सतगुरु नाम निदान है क्रम पर आपत होए सतरत गुर शब्द सचरत गुर शब्द तन सच्ची सदा लिव होए नानक जस नो मिल न विचरे सहज सुमाव सोए महला तीजा सो भगवते जो भगवंत जाने गुरु प्रसादी आप छाने ताप तराखा कित करयाने जीवित मर ना बखाने ऐसा भगवते उत्तम हो नानी सच समाप सोय महला तीजा अंतर कपट भगवते कहाए पाखंड पालम कदे न पाए पर निंदा करे अंत मल्लाए

हार नाम के आन निवाय श्लोक महला तेजा वेश करे करूप कलखणी मन घोटे कुड़े आर फिर के पाने ना चले हुकुम करेगा बार गुर के पाने जो चल सब दुख निवारण हार लिखे आ मिट न सकी है जो तुर लिखिया करता रे

पूरे पूरा कर छोड़िया। हुक्म सवार नहार गुरु प्रसाद जन भूजिया, तुन पाया मुख द्वार मान मुख हुक्म न जाने, तुन मारे जम जंधार गुरमुख जन आराध्या, तुन तरिया पव जल संसार सावियो गुण गुणी मिटाया, गुरु आपे भगतन हार पौड़ी हर की भगतां प्रतीत, हर साब किस जानदा हर जीवड़ नाही कोई जान, हर धर्म विचार दा काड़ा दसा क्योंकि दे जान नाही अतरम मारदा। सच्चा साहिब सच ने पापी नर हारदा, सलायो भगत कर जोड़ हर भगत जान तारदा। श्लोक महला तीजा, अपने प्रीत मिल रहा अंतर खर तार चलाही, सो प्रभ सदा सदा गुर के हित प्यार, नानक जस नजर करे तस मिल लय साई सुहागण नार। महला तीजा, गुर सेवा ते हर पाई जा को नजर करे, मानस ते देवते किए त्याया, नाम हरे ओ में मार मिलान गुर के सब तरे, नानी तत् समाय नरे अपनी कृपा करे पौड़ी। हरे अपने भगत कराए बड़े आई वे खालियन, अपने आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन, हर भगतन दे आनंद थिर करी बहाल, पापियानो ना दे थिर रहन चोन नरकोर चालियन, हर भगतानो दे प्यार कर अंग निस्तारियन। श्लोक महला पहला, कुबुद डूमणी कुदया कसायण, पर निंदा कट चूड़ी मुठी क्रोध चंडाल, कारी कटी क्या थी अजा चारे बैठिया नाल, सच संजम

त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जी काए अचर जग सुनो रे पंडिया भगत कह न जाए सुर नर गण गंधर्व जन मोहे त्रैपण में खुले लाई राधा रामन हद के गरीब जाके दस नाद देव लाग रहो पाठी गगन सिंह आर चुंगया अकनक कलश एक पाया तिस नाद लेव लाग रहो श्री राग भगत कबीर जियो का चर देख सुनोरे पंडिया कह ना जाई सोर नर गण गंधर्व जन मोहे त्रे पवन में खुले लाई राधा रामनद किंगुरी बाजा जा के दिस नाद लिव लागे राव पाठी गगन सिंगया अर चुंगया कनक कलस इक पाया तिसमें तार चुए अत निर्मल रस में रसन चुआया एक जो बातानु बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन में को जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब परम पुलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाणी भगत बेणी जियो के पैरियां के कर गावना एक ओंकार सतगुरु प्रसाद रे नर गर्भ कुंडल जब आचत ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना अहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन संबल कष्ट महा दुख अवचित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नर हर मनो बिसारिया फिर पछता महंगा मुड़िया तू कवन कुमत भ्रम लागा चेत राम ना ही जम पुर जाएगा जन बिचरे अनुराधा राहो बार विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह ब्यापे रास में सुमेद अमृत बिख चाखे तो पंच प्रगट संतापे जब तब संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछल्या काम काल मत लागे तो आन सकत गल बांधया

मन ना पछानिया सत संपत देख एहो मन गर्भया राम हृदय तै खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म बिगोया पुंडर के

पुनर्वैर अकाल मूरत आजू निस भंगुर प्रसाद हर नाम हर मन पाया वड भागी हर नाम चाया गुरपुरे हर नाम निद पाई वड भागी।

गावै। हर हर दया करो गुरु मिलो जन नानक गुरु मिल रहस जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा ने सुनिए। मिलसा संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्र तरिए जियो। आओ सखियर मिल करे मेरे प्रीत।

जो तेरे काले सौरदा सोहला जत हृदय तू वठा सबना के दाचारा दियो तू सांदा साहेब बाप मारा नाओ निध तेरे अकुट भंडारा।

ना जाई दियो। खाक संतन के दे प्यारे आए प्यार तेरा द्वारे दर्शन पे कितमानिया गा पे नानक मिलन सुभाई दियो। माध महला पंजमा दुख तदे जा विसर जाए भुख बे आपे भो बेतावे सिमरत नाम सदा सुहेला जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुरु मेरा बड़ समरथा जी संभाली ता सब दुख लता चिंता रोग हो पीड़ा आप करे प्रतिपाला जियो। बारक वांगे हो सब किस मंगा दिन दे तोटना ही प्रभ रंगा पैरी पै पै बहुत मनाई दीन दयाल गोपाला जियो। हम बलिहारी सतगुरु पूरे

रेन संतन के मेरे मुखला के दुर्मत बिनसी कोविंद पागे सच कर बैस रहे गुण गाय नानक बिनसे को राजियो माधमा हल्ला पंजमा विसरना ही एवड दाते कर कृपा भगतन संगराते दिन सुरैन जत त्याई एहो दान मोह करना जियो माटी अंधी सुरत समाई साब किच दिया भलिया जाई आनंद बिनोद चोई तमासे तुद भावे सोहना जियो दिता दिता सब कुछ लेना छत्ती अमृत भोजन खाना सेज सुखाली से तल पवना सहज केल रंग करना जियो सा बुद्ध दीजै जित विसरे नाई सा मत दीजै जित तुद त्याई सा सुसा सिरे गुण गावा उठना गुर चरणा जियो माध महला पंजमा सिफत सलाह तेरा कमर जाई सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई सोई जप सो प्रभ जियो भावे भाण पूर ज्ञान जियो अतर अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहेब तेरे मन पावे तू संदन का संत तुम्हारे संत साहेब मन मान जियो तुम संतन की कृपा प्रताप पाला संत खेला तुम संगो पाला अपने संत तुझ करे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो

पंचमा तू जल निद हम मीन तुम्हारे तेरा नाम बूंदम चात्र रे तुमरे आस ब्यासा तुमरे तुम्हें संगमर मुलीना जियो जो बारक पी खीरा गावे त्यो निरतन तन देख सुख पावे त्रिकावंद जल पीवे ठंडा त्यों हर संग ए मन पीना जियो।

बसेरा गुरबंधन तिनके सगले काटे जननान सह सुमाई दियो माज महला पंजवा प्रभु कृपा ते हर हर त्याव प्रभु दया ते मंगल गावो उठत बैठत सोवत जागत हर त्याई सगल अवरदा जियो नाम कदम को साधु दिया कृप काटे निर्मल थे आनंद प्या निक्सा पीरा सगल बना से दरदा जियो जिसका

तू सुखम होवास तुल्य तू जल निद तू फैन बुध बदा तुद बने अवर ना पालिय दियो तू सूत मणिय पितु है तू गंठी मेर सिर तू है आद मध्य अंत प्रभ सोई अवन कोई दिखाली है जो तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्वाण रसिया रंगराता अपने कर्तव्य आपे जाने आपे तुद संभाली है जियो तू ठाकुर सेवक पुण्य आपे तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे नानक दास सदा गुण गावे एक भोरी नदने हाली है जियो माध महला अपनी सफल सुबण जितना वखाणी गुर प्रसाद किन विरले जाने तन सुवेला जित अर गावत सुनाए ते परवाना जियो।

सोहे। अत उजर नाम ते आमनिया ओ वारी जियो वारी गोबिंद गुण गामनिया। गोबिंद गोबिंद कहे दिन राती गोबिंद गुण शब्द सो नामनिया रहाओ। गोबिंद गावे सरसवाई गोबिंद कहे दिन राती गोबिंद गुण शब्द सुनामनिया रहाओ। गोबिंद गावे सरसवाई गुर के भय उज्जल होमे मल जाए सदा नंद रहे। भगत करे दिन राती सुनु गोबिंद गुण गामनिया। मनवा नाचे भगत दड़ावे गुर के शब्द मने मन मिलावे। सच्चा ताल पूरे माया मोह चकाए शब्द कृत शब्द नृत करामनिया। उचा कूके तने पुछाए माया मोह जिहा जमकाले माया मोह इस मने नचाए अंतर कपट दुख पामनिया। गुरमुख भगत ज आप कराए तन मन राता सरसबाए। बाणी वजे शब्द वजाए गुरमुख भगत थाए पामनिया। बहुताल पूरे वाजे वजाए नक सुने ना मन वसाए। माया कारण पड़ बंद नाचे दूजे भय दुख पामनिया। जैसे अंदर परीत लगे सो मुक्ता इंद्र इंद्री वस सच संजम जूता। गुर के शब्द सदा हर त्याए इहा भगत हर पामनिया। गुरमुख भगत जुग चारे होई होर ते भगत ना पावे कोई। नानक ना गुर भक्ति पागे गुर चरनी चित लामनिया। माज महला तीजा सच्चा सेवी सच सलाही सच्चे नाहे दुख का भी नाही। सुखदाता सिम सुख पायन गुरमत मन बसामनिया। ओ वारी जियो वारी सुख सहज समाधल गमनिया। जुहा से वे से सदा सोहे सोभा सुत सुनामनिया रहाओ। सबको तेरा भगत कहाई से भगत तेरे मन पाए। सच बाणी तुझे सलाहन रंग राते भगत को रामनिया।

नाम सिरों पल को बार जाए नाम नाम न लाए बहुत बेगार दुख पाए मन मुख अंधे सूझे नाही फिर फिकर आए मन गुरमुख वथ पावनिया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन बेखे होमे मैल जाए बैस्थान सद हर गुण गाए सच्चे शब्द समावनिया नाउ दर ठाके तापत रोहाए दसवें निज घर वासा पाए उथे अनहद उथे अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमति शब्द सुनावनिया बिन शब्द अंतर हनेरा न बस्त लाए न चुके फेरा सतगु हथ कुंजी होत दर खुले नाही गुर पूरे पग मलामनिया गुप्त प्रगट तू सबने थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन बसामनिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मिलाए आपे काल न जोए दुख ना संतापे होमे मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावनिया हो वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावनिया गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हस तिच तलामनिया रहाओ गुरमुख जीवे मरे परवान आ जाना सीधे शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाए गुरमुख सच समावनिया गुरमुख हर दर सोभा पाए गुरमुख विचो वाप गवाए आप तरे कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सुवारनिया गुरमुख दुख कदे न लगे शरीर गुरमुख होमे चुके पीर गुरख मां गुरमुख मन निर्मल फिर मैल न लागे गुरमुख सहज समावनिया गुरमुख ना मिले वड्याए गुरमुख गुण गावे सोभा पाए सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावनिया गुरमुख आंदे शब्द राता गुरमुख जोग चारे चारे है जाता गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्द भगत करावनिया

साचा सहर गुरमुख जापे पूरे गुर ते सब जापे जन पिया से तृप्ता से सचे सचा गावनिया तिस कर सहसा सोई सहेला नंद बनो करे सदकेला सो तनवंता सो वडसा जो गुर चरनी मन लामनिया पहलो दत रिजक समा पिछो दत संतो पा तुद जेवड़ दाता अवरना स्वामी लवे न कोई लामनिया जिस तू बिठा जो तुद त्याए साजना के मंत्र को माए आप तरे सगले कुल तारे तिस दरगे ठाक ना पावनिया तू वड्डा तू उचो उचा तू बेअंत आत्म उचो मोचा हों कुरबानी जाए भंग नानक दास दुसा कौन समुक्ता कौन सुजुगता कौन सुज्ञानी कौन सुभक्ता कौन सुगृह कौन दासी कौन सुकीमत पाए जियो किन मिद बाधा किन मै छुटा किन मदया मा जाम टुटा कौन कर्म न कर्मा कौन सुकहे कहाए जियो कौन सु सुखिया कौन सु दुखिया कौन सु सन्म कौन सुबुखिया किन बद मिले किन बे बिछरे ए बेद कौन प्रगटाए जियो कौन सु अखर जित जित ताप तरहता कौन सुपदेश जित दुख सुख साम सहता कौन सु चाल जित पार ब्रह्म ते आए किन बेद की कीर्तन गाए जियो गुरमुख मुक्ता गुरमुख जोगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भक्ता धन गृह उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जियो होमे बाद

संत सहाई प्रेम के हो तिनके लागा पाए, बिन प्रभ क्यों सुख पाए, दूजी नाही जाए।

से बिछड कथे न जाए प्रभवें दूजा को नहीं प्रभवें दूजा को नहीं नानक हसर नाए असो

राम स्यों संग साथ सहेलड़ियां साध जनाते बारी से रहन अकेलड़ियां तिन दुख न कबू उतरे ते इन दुख न कबू उतरे से जम के बस पड़ियां जिन्नी जिन्नी रावे प्रभ अपना से दिसन नित खड़ियां रतन जवारे लाल हार कंठ तना जड़ियां।

जाए। इस पुन्नी बड़ भागनी, इस पुन्नी बड़ भागनी, वर पाया हर राय, मिल सखिया मंगल गावी, की तुक बिंद लाए। हजिहा अवर ना दिसी, कोई दूजा लवे न लाए, हलत पलत सवार नच दित्यन जाए। संसार सागर ते रखिन, बाढ़ न जन्मे ताए, जिहवा एक अनेक गुण तरे, नानक चरनी पाए। फलगण नित सलाये, जिसु तिल ना तुमाए, जन जन नाम ते आया, तिनके काज सरे, हर गुर पूरा राध्या, दरगे सच करे, सर्व सुखा निद चरन हर, पवजल बिकम तरे। प्रेम भगत तिन पाया, बिख्या नै जरे, कूड़ गहे दुविधा नसी, पूर्ण सच परे, पार ब्रह्म प्रभ सेव दे, मन अंदर एक तरे, महादेव समूर्त भले, जिसको नदर करे। नानक मंगे दस दान, कृपा करो हरे। माज महला पंजमा, दिन रैन एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सेवी, सतगुरु अपना हर सिमरी, दिन सब पै रहन, आप त्याग चंदी पवा, मुख बोली मिठड़े बैन। जन्म जन्म का बिछड़िया, हर मेलो सज्जन सैन, जो जियो हार ते बिछड़े, से सुख न वसन पहन।

पौड़ी तो करता पुरख गम आप से तो पति रंग प्रंग उपाजा बहु बहु बहु बहु वेद पति तू जाने जन पाए सबके तुमती एक आवे एक जावे उठ बिन नावे मर जाती गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख बधाती।

कहया कथना भरिया पर तो मां आप न बुझा लोको बुझाई ऐसा आगू मां नानक अंधा हो एक दसे रहे राहे सब सुभावे।

माया हंकार चुकावे ताज काम कहमनी मोह तजे न अंचन महे निरंजन पावे ताज मान अभिमान प्रीत सुदारा ताज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन बसे साच शब्द हार।

रथ पीने राजे सिरे ऊपर रखे ए वेजा पे पाओ पी तुहे सलाना पी तुहे सलाना आखन लहे नचाओ महला पहला अगे पाला कपड़ होए खाना होवे वाओ सुनमे दिया मोहनिया इस हवन नानक सबो पाओ सबो जाओ।

कोय। जे जीवे पत लथे जाए सब हराम जे तक सिखाए। राज रंग मूल रंग रंग रत्ता नचे रंग नंग नानक ठग्या मुठा जाए। विन आवे पत गया गुवाए महला पहला।

चखिए सच्चे की सकत सच्चे की सरकार जोग जोग जानिए हुकम ने सरदार दर दिवानिए फरमानी है कार खसम पठाया तबल बाज बेचार शब्द सुनाया एक होय सवार एक ना साथी एक नी बदे पार एक ना ताती श्लोक महला पहला जा पक्का ता कटिया रही पलरवाड़ सौ

चौने सोना पागे चौंचन चौंचन कावे खास लोहा मारन पागे तहे न होए कपास। नानक मूर्ख ए गुण बोले सदा विनाश। महला पहला कहया कंचन टूटे सार अग्नि गंड पाए लोहार गोरी सेती टूटे पंतार पंतार पुत्ती गंड पवे संसार। राजा मंगे दिते गंड पाए भुखिया गंड पाए जा खाए काला गंड नदिया हो चोल गंड प्रीति मिठे बोल। बेदा गंड बोले सस को मुया गंड नेकी ससो होए एत गंड वरते संसार। मूर्ख गंड पए मोहे मार नानक आखे ए बचार सिपती गंड पए दरबार पौड़ी। आपे कुदर साज के आपे करे बिचार एक खोटे एक खरे आपे परखनहार खरे खजाने पाएन खोटे खोटे सुटे बार बार खोटे सच्ची दरगे सुटिए किस आगे करे पुकार। सतगुर पिछे भज पवे या करनी सार सतगुर खोट्यों करे खरे खरे शब्द सवार नहार सच्ची दर

खरा पछाणिया। सलोक महला पहला। सीहां बाजां चरखां खोईयां इना कवाले खा कहो खान तिना मास खवाले ए चलाए रा नदिया बिच टिबे दिखाले थली करे सुगाओ कीड़ा थाप दे पासाई लस्का करे सुवा जेते जी जीवन ले जा साहज वाले ताके अवसा नानक ज्यों नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों देख रा महला पहला। एक मास हारी त्रै त्रहन खाए इक ना सत्ती अमृत पाए एक मिटिया मैं मिटिया खाए एक पौन

होए जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई आखन बेखन बोलन चलन जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मे विच रखे नानक सच्चा आप पौड़ी सतगुरु सेवन संग परम चकाये सतगुरु आखे का सुकार कमाये सतगुरु होए दयाल ता नाम ते आगे लहा भगत सुखा सार गुरमुख पाये।

मूल जान गला करे हान लाए ता हान लाभ न चले सच राय सो विष्ट परमान से संसे सासन से अगाध क्यों क्यों कहो क्यों पहुंचे बाण अगे ओ अगम है वह निंदड़े जान पौड़ी।

जिन किस किया सो किस करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत असा समान, तिस विच भुख बहुत नसान।

नजर पई कर करते जानिया जत सत तीर्थ मंजन नाम अदक बेथार करो किस काम नर नारायण अंतर जाम आन मनो तो पार कर जाओ किस जाचो नाही को थाओ नानक गुरमत सहज समाओ गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सुमरन दिखाए मन रहन रस अमृत पाए गर्भ निवार गगन पाए मन लिखाए आए नहीं रहना हर जप जाप रहो हर सरना रहाओ सतगुर मेता दुबदा भागे कमल बिगास मन हर प्रभ लागे जीत मरे महा रस आगे सतगुर मिले सच संजम सूचा।

करे पुकार जना श्री राम नाम उचर बना आगे जम दहल बिखमकना रहो उसार मरोली रख रख दोबारा पीतर बैठी सात नाय अमत केल करे नित कामना अवर लुटे सो पंच जना टाहे मरोली लुटिया दोहरी उसा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संग पड़िया जम डंडा गल संगल पड़िया

मने को साहेब भाई रे तेरे तीन गुणा संसार समावे अलखना लखना जाई रे रहाओ सकल खंड माया तन मिठी हम तो पंड उचाई रे रात अनेरी सुजसनाई लज टुक्स मूसा पाई रे मनम करे मनम कहे तेता दुख

राम जपो जी, ऐसे ऐसे राम क्या है वाहेगुरु जी ने, राम जपो जी ऐसे ऐसे किस तरह। हां उन्होंने भगतां दी उदाहरण दी कि ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। प्रहलाद छोटी उम्र च जपन लग पे, स्कूले जांदा सी, बच्चे इकट्ठे कर लैंदा सी, सारे जाने फिर उची उची जपदे सी। प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद बहुत उन्हें जपया, ता ही उन्हें उदाहरण दिती है कबीर साहब ने। कहिंदे उन्हें जप जप के अपने मन नू भवजल चों कढ लिया, ते आपां भी कढ सकदे हां। भवजल की है? अंदर जिहड़ियां सोचां चलदियां, भवजल किहनूं कहिंदे आ जी? जिहड़े साडे अंदर थॉट्स ने, विचार ने, सोचां चलदियां रहिंदियां सारा दिन, ये मन भवजल च डुब्बा रहिंदा। पर निकलना कद नाल है? आ जिहड़ा जहाज है वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे, पर चढ़ाओ इहदे ते, उच्ची बोलोगे ना संगत आ के बड़ी छेती भवजल तरी दा वा। जे तुहानूं जाच आ जावे, जे तुहाडे कोल नहीं बोलिया जांदा, ते जिहड़ा नाल बैठा उहदी आवाज़ च रला दिओ अपनी आवाज़ नूं, जिन्नी कु आवाज़ कढ सकदे आ उहने तुहानूं पार लै जाणा। पर रला के ते वेखो ना, सुरती सुरत रलाईए एत, तन कर तुला लंघ जाणा पार, तुला बना लो इहनूं, है ना। वह फिर सानू सतगुरु गुरबाणी दस दे कि दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाए बेड़े। वाह गुरु आ बेड़ा, जे तुहाडे कोल नहीं बोलिया जांदा ते नाल दे दी आवाज नूं फड़ लो, है ना, उहदे विच अपना ध्यान ला लो, अपनी आवाज उच्च लाउण दी कोशिश करो। जे रल गई ना वेख्यो तुसीं, एक तो आनंद बहुत आऊगा, फुरने हट जाने ने, सोचा जिहड़ियां इह आनंद नहीं लैण दिंदियां, इह डुब्बिया रहिंदा मन सोचा च, सिमरन करदे भी डुब्बिया रहिंदा, गुरबाणी पढ़दे भी डुब्बिया रहिंदा, निकलता नहीं गा। ता ही उन्हें सानू दस्सिया ना, सतगुरु है बोहे था शब्द लंघावन हार। सतगुरु की हजूरी च बैठे हाँ, तुसीं सारा शब्द की कमाई कर रहे हो, इन्हें तुहानू पार लै जाणा। पर आपां सिख लईए पार किदां होना, पार होना सोचां दे समुंदर चों निकल जाना। सोचां दे समुंदर च डुब्बिया, तीन किस्म दा सागर आ साडे अंदर, सुख सागर आ जिहनूं तमो सतो गुण कहिंदे, अग्न सागर आ जिहनूं रजो गुण कहिंदे, ते बिख सागर आ जिहनूं तमो गुण कहिंदे। इह तिन्नां तों फिर महासागर बणदा भवजल, इहदे च मन डुब्बिया रहिंदा, कदी रजो गुणी विचार लई जांदा, कदी तमो गुणी विचार लई जांदा। उस गुरुद्वारे आ के चेता आउंदा, उन्हें मैनू आ कहा ही मैं उन्हें जाके इदा करना, है ना, वो इत्थे आके सारा चेता आउंदा। इत्थे आके अस होर डुब जाने, जिन्ना चिर तुसी बोलते नहीं उन्ना चिर इन्हां विचारां चों निकलिया नहीं जाना। जदों बोलोगे तो तुहाडे मन च वसना शुरू हो जाएगा वाहगुरु, क्योंकि अखां तुसी बंद कर लईआं, मन कन्ना च आ गया, उदों फिर तुसी गुरमंत्र बोल के सुनो, गा भी है सुनीए मन रखिए पाओ। तो इन्हां दुख क्या सोचा, दुख पर हर ये हट जाने, सुख तुहाडे अंदर चरण प्रगट हो जाने, सावन सरसी कामणी चरण कमल सिओ प्यार। इन्ना रंग दिओ मन नूं, मन तन रत आ सच रंग, इको नाम आधार। वाह गुरु, वाह होर कुछ ना आवे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार बना के, तो वेखो इन्हू मन का आसरा आधार की हुंदा जी, जो वाहे गुरु बोल के सुनोगे तो आधार बन जाना, इन्हें सोचा हट जानिया। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन, आ जड़िया भी तृष्णा भुखा सब गवाईया, कर शांत सुख मन आए